0: जब जमीन भौंचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ है, उस रोज वो अपने हालात बयान कर देगी क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म भेजा होगा। उस दिन लोग तरह तरह के होकर आएंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: والعاديات ضبحا

الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

0: उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हांफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो इस बात से आगाह भी है और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे, बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث।

0: खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब जिसके आमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون।

क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: माणूस
1: कुरैश के मानूस करने की बिना पर, यानी उनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने की बिना पर, उन्हें चाहिए कि उस नेमत के शुक्र में उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन बख्शा।
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج.

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-91-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

وصف آقا کے اور ان کی آل کے لکھو ندیم.

अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सरेंडर करने जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो सऊदी अरब यूएई कतर समेत बेन मुल्क की दरख्वास्त ईरान से गाल जारी हैं। सुठो मुआहदो कर ईरान वी आखिरी मौको है। ईरान मुआहदो न कर तो खेस तबाही के मुंह डेण पव ईरान के क्यादत के खात्मे का अग आखिरी मौको डेण चाहूं था। उम्मीद है ईरान अकुल का कम वो दुरुस्त फैसलो कौन।

जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आबना हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे, आबना हरमुज़ मां कंहिं ॿिए रस्ते जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि, कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे, उहे बि नुक़सान खां खाई वापसि मोटी खाई रहिया आहिनि। यूक्रेन खां पलांद लाइ टिनि हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे पंहिंजी ग़लती तस्लीम कई ऐं आईंदा ॿीहर अहिड़ी ग़लती न करण जी पक ॾियण सबबि हमले जे इरादे खे मुलतवी करे छॾियो।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा आजाद कश्मीर के चूंडन में नवाज लीग ते धांधलिन जा इल्जाम मुलगीर तहरीक हलान जो ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी पेंजे बयान में चयो आहे त नवाज लीग हुकूमत जा डींह गणजी चुका आहिन। आजाद कश्मीर में पीपी कारकुनन नवाज लीग जी डाढ़ जो मुकाबलो कयो ऐं शहादत माणी। ही शफाफ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ऐं मुज़फ़राबाद में चोरी कयल सीटूं हुननि खां वापसि वठंदसि। नवाज लीग गौर सां ॿुधे संदन ॾींहुं गणजी चुका आहिनि।

कराची पुलिस जा अहलकार पुलिस मोबाइल में स्मगलिंग कंदे बलूचिस्तान में गिरफ्तार आए जी सिंध की मुदाखलत बाद सिंध पुलिस हवाले केस दाखिल करण बाद गिरफ्तारी भी जाहिर स्मगलिंग में मुलविस अहलकार की सरपरस्ती कंदड़ एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी मुअत्तल गिरफ्तार थियल अहलकार पुलिस मोबाइल में नशे वारियूं सोपारियूं सिगरेट ए बो सामान मौजूद हो कराची क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में मुकर्रर एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी अहलकारन के छॾण लाइ भी पहुतो हो अहलकारन खिलाफ़ दाखिल कयल एफआईआर में एसएसपी ऐं पुलिस मोबाइल जो ज़िक्र नाहे कयो वियो आईजी सिंध पारां बि सख़्त कार्रवाई जी हिदायत।

0: स्पीड में।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0302018-00003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोचन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
7: 0301-399-2836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी। 0319-1558-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार। कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी।

नवा सूबा एजेंडा ते नाहे नहीं आइन में का खोट आहे खोट निजाम में न पर असा में आहे असा आइन ते अमल नाहे कयो आइन ए निजाम ते सच्चाई से अमल कंदासी त निजाम बे डिलीवर कंदो। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असा आइन जी भंजकड़ी कयूं ए निजाम के जकड़ियल रखियूं त ही कम कीअं कंदो ही सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे अगते भी कामयाब रहंदो। आजाद कश्मीर जी चूंड शफाफ थी आहे चूंड अमल मुकम्मल थियण बाद पीपल्स पार्टी भी नतीजा तस्लीम करे वठंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सरेंडर करने जो मुतालबो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब यूएई ए कतर समेत बेन मुल्कन जी दरख्वास्त ईरान से गालियों जारी आहिन सुठो मुआहदो करण ला ईरान वट आखिरी मौको आहे ईरान मुआहदो न कयो त खेस तबाही के मुंह देणो पवंदो।

सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तन ते आबना अर्मुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे। जेके बि नुक़सान बाद मोटी रहिया आहिनि, यूक्रेन खां पलांद लाइ टिनि हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन करे ग़लती तस्लीम कई ऐं ॿीहर ग़लती न करण जी ख़ातिरीअ ते हमले जो इरादो मुलतवी कयो।

सिंध समेत समूरे मुल्क में चालीह जा मातमी जलूस सिंध में चालीह जलूसन लाइ सिक्योरिटी इंतिही सख़्त कई वई आहे। कराची हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां निकतल जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5000 खां वधीक अहलकार मुक़ररु।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आहिन।
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03208003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर, FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

इसका हुसैन कहना बता रहा है कि कितना टूटा हुआ होगा ये तेरी दुनिया में ए हुसैन के खुदा।

میرا کوئی نہیں سوائے حسین، کہتا ہے

0: सुनो दोस्तों, एक लम्हे की जिंदगी में मुझको भी तमन्ना है, आप सब भी देखना चाहते होंगे वो क्या। अब ये हिंदू क्या कहता है
1: कि मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर,

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
6: उठी तरस तड़ियां वगोनी घर जो, ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो, पांजे नढड़े अदे ये अली असगर जो, ओठी तरस तड़ियाए, ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो, पांजे नढड़े अदे ये अली असगर जो, ओठी तरस तड़ियाए। तुझे उठ दया करे खैर धनी, ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी। तुझे उठ दया करे खैर धनी, ये दुआ थी घुरा पांजा हथड़ा खणी। शल तो खे बिडे रब उम्र घणी, जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल बर जो, ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो, ओठी तरस तड़ियाए वगोनी घर जो, पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो, ओठी तरस तड़ियाए। वनी पहुंचंदे जाते वञणो थई, मुझी कयल सदा खे मञणो थई। वञी

हर हर जो ओठी तरस तरियाए वगो नी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तरियाए चयो साइन सुगरा नाम अथम अबो पाक हुसैन इमाम अथम चयो साइन सुगरा नाम अथम अबो

ओठी तरस तड्याए वगोनी घर जो ओठी तरस तड्याए वगोनी घर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड्याए लफ्ज बचड़ी जा जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोन लगो लफ्ज बचड़ी जा जड

ओठी तरस तड़ाए वगोनी घर जो पांजे नंढड़िया दे अली असगर जो ओठी तरस तड़ाए कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग खलक्यो खुदावंद जन जे करे कयों हेडा कशां लाकन जे करे जग

तरस त ॾियां वॻोनी घर जो पंहिंजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस त ॾियां ओठी तरस त ॾियां वॻोनी घर जो पंहिंजे नंढड़े अदे अली।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: नवा सूबा एजेंडा ते नाहिन नहीं आइन में का खोट आहे, खोट निजाम में न पर असा में आहे। असा आइन ते अमल नाहे कयो, आइन ए निजाम ते सच्चाई सा अमल कंदासी त निजाम में डिलीवर कंदो। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असा आइन जी भंकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़े रखूं त ही कम कीअं कंदो। ही सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी।

अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सिलेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो सऊदी अरब यूएई कतर समेत बेन मुल्क की दरख्वास्त थे ईरान से गाल जारी आन सुठो मुआदो कर ईरान वट आखिरी मौको है ईरान मुआदो न कर तो खेस तबाही के मुंह डेणो पवंदो।

ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिकी शर्तनि ते आमना हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। ईरान जी वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। कुझु जहाज़नि खे अमेरिका धिके रहियो आहे। जेके बि नुक़सान बाद मोटी रहिया आहिनि, यूक्रेन खां प्लांद लाइ टिन हंधनि जी निशानदेही करे छॾी हुई, पर यूक्रेनी इख़्तियारनि फोन ते ग़लती तस्लीम कई ऐं ॿीहर ग़लती न करण जी ख़ातिरीअ ते हमले जो इरादो मुल्तवी कयो।

ये इलाके लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन केतराई खारजी जहनम भेड़ा सिक्योरिटी जरिए मौजूद फोर्सेज गुजी इतला ते लखी मरवत में ऑपरेशन कयो वयो जैं दौरान दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया वयो। ऑपरेशन दौरान केतराई खारजी दहशतगर्द मारजी वया आएं संदन थाक तबाह किया वया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस के शहीद जो दिहाड़ो अज मल्हायो पियो वञे। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरन में पुलिस ऑफिसर ने जवानन के शहीद की मज़ार ते हाजिरियूं गुलन जूं चादरूं रखी सलामियूं डिनियूं वयूं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ए बेन पारां पुलिस के शहीद के भेटा पेश। सदर आसिफ जरदारी चयो तो पुलिस मासूम जानन के तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं कुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि। वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो तो पुलिस जा शहीद कौम जो फख्र आहिनि। घरू वजीर मोहसिन नकवी चयो तो वतन लाइ पुलिस जूं कुर्बानियूं विसारण जोगियूं नाहिनि। बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03000338569।
3: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री, नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेहरापुर। असां वट जगह जो ॾियारियूं, जगह जा पावा ऐं पाइप, डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014514456 ऐं तौकीर अहमद 03616237393।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9-5-8-1-1
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: said, we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking. I'm saying, we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many, many countries called, many, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. It's a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: Mr. President, New York City Mayor Sarah Mamdani is required.
2: अमेरिकी सदर ट्रंप जो हिकु भेरो ॿीहर ईरान खां सरेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब यूएई ऐं कतर समेत ॿियनि मुल्कनि जे दरख़्वास्तनि ते ईरान सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सुठो मुआदो करण लाइ ईरान वटि आख़िरी मौक़ो आहे। ईरान मुआदो न कयो त खेसि तबाही खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझु खे नाकारा बणायो आहे। अमेरिकी शर्तनि ते आबन हरमुज़ न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइमु आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भुगणा पवंदा। तेहरान आबन हरमुज़ मां कंहिं बि मुतबादिल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। आबन ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापसि मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिनि ऐं ना ही आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कमु कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 6 ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जे रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे 6 ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे। मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 55% थी वई आहे। इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तालीमी तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे। हिन वक़्ति मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे। ज़खीरो ऐं इस्तेमाल मसइलो बणियल आहे। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन केतिरा ई ख़ारिजी जहनम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु फोर्सिस गुझी इतलाह ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे ताक़नि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं संदन ताक तबाह थी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾियारो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं वयूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं साराह जोगियूं आहिनि। वज़ीर आज़म
3: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: McIntyre in particular, but others also. Many countries go up. They leave me friendly with a lot of them. Almost all of them, one way or the other. And they all wanted to give this a last chance. It's a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: Mr. President, New York City Mayor Soran Mamdani is required.
2: अमेरिकी सदर ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सिलेंडर करण जो मुतालबो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो सऊदी अरब यूएई ए कतर समेत बेन मुल्क की दरख्वास्त ईरान से गाल जारी है सुठो मुहिदो करण ला ईरान वट आखिरी मौको है ईरान मुहिदो न कयो त खेस तबाही के मुंह डेणो पवंदो अमेरिकी सेनेट काम है ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है 44 बहरी जहाजन के वापस मोटाया वो है कुछ के नाकारा बनाया है अमेरिकी शर्तन ते आप हरमुज न खुलंदो ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते कायम आहे अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही ते नतीजा खतरनाक निकरी सघनि था ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भोगणा पवंदा तेहरान आबन हरमुज मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो न ही कबूल कंदो अपना ईरान जे वार्निंग ते जहाज वापस मोटाए रहा आहिनि।

0: नवा सूबा एजेंडा ते नाहिन नहीं आइन में का खोट आहे, खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो, आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कमु कीअं कंदो। हीउ सिस्टम अध सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे, चूंड अमल मुकमिल थियण बाद पीपल्स पार्टी बि नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ायदा शुरूआत थी वेंदी। फ्रेम्स मां स्कूलनि में शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। पाकिस्तान खे बिजलीअ जी पैदावार न पर इस्तेमाल ऐं ज़खीरो करण जो चैलेंज आहे। मुल्क अंदरि कुदरती वसीलनि मां बिजलीअ जी पैदावारी सलाहियत बि 50% थी वई आहे। इस्लामाबाद में सोलर बाबति कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे तवानाई वारे वज़ीर अवेस लगारी चयो आहे त पाकिस्तान तवानाई जे शोबे में तब्दीलीअ मां गुज़री रहियो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में सोलर ज़रिए 38,000 मेगावाट बिजली पैदा थी रही आहे। ॾींहं जो वाधू बिजली हूंदी आहे ऐं राति जो तलब वधी वेंदी आहे। बिजलीअ जो ज़खीरो ऐं इस्तेमाल मसलो बणियल आहे। के पी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, केतिरा ई ख़ारजी जहनुम भेड़ा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8191।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दिन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई,
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003855569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: One way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
2: Mr. President, New York City Mayor Zohran Mamdani is required.
3: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक भेरो बीहर ईरान का सरेंडर करण जो मुतालबो करे छो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सऊदी अरब, यूएई ए कतर समेत बेन मुल्कन जी दरख्वास्त ते ईरान सां गालियूं जारी आहिनि। सुठो मुआहिदो करण लाइ ईरान वट आख़िरी मौको आहे। ईरान मुआहिदो न कयो त खेसि तबाहीअ खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। अमेरिकी सेनेट काम चयो आहे त ईरान जे बहरी नाकाबंदी जारी आहे। 44 बहरी जहाज़नि खे वापसि मोटायो वियो आहे, कुझ खे नाकारा बणायो आहे। ईरान जंग वधाइण जो ख़्वाहिशमंद नाहे, सरहदनि जो दिफ़ा जारी रखंदो। तेहरान खे अहिड़ो मुआशिरो क़ाइम करण ते कम करणु घुर्जे जेको दुश्मन खे मुदाख़लत ऐं विरहाङो पैदा करण जो मौको न ॾे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त इख़्तिलाफ़नि जो ख़ात्मो परॾेही मुदाख़लत वारनि इम्कान खे घटि कंदो। अहिड़ो मुआशिरो ठाहिणो आहे जेको दुश्मन खे ईरानी समाज खे विरहाइण या तबाह करण जो मौको न ॾे। इस्तीफ़ा न ॾींदसि, मुल्क लाइ कम कंदो रहंदसि।

0: अमेरिकी शर्तनि ते अब्न हर्मुज न खुलंदो। ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहे। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही त नतीजा ख़तरनाक निकिरी सघनि था। ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जे सीनियर सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान अमेरिकी नाकाबंदीअ खे वधीक बर्दाश्त न कंदो। नाकाबंदीअ ते अमेरिकी बहिरिया ऐं फ़ौज खे नतीजा भुगणा पवंदा। तेहरान अब्न हर्मुज मां कंहिं बि मुतबादल रस्ते जी इजाज़त न ॾींदो ऐं न ई क़बूल कंदो। अब्न हर्मुज ईरान जे वार्निंग ते जहाज़ वापस मोटी रहिया आहिनि। नवां सूबा एजेंडा ते नाहिन ऐं नाही आइन में का खोट आहे। खोट निज़ाम में न पर असां में आहे। असां आइन ते अमल नाहे कयो। आइन ऐं निज़ाम ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त असां आइन जी भञकड़ी कयूं ऐं निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त हीउ कमु कीअं थींदो। हीउ सिस्टम अधु सदी कामयाब रहियो आहे, अॻिते बि कामयाब रहंदो। आज़ाद कश्मीर जी चूंड शफ़ाफ़ थी आहे। चूंड अमल मुकमिल थियण बाद नतीजा तस्लीम करे वठंदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीम खाते बाबति अहम इजलास। तालीम वारे वज़ीर सैद सरदार शाह इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त छहनि ज़िलनि में फ्रेम्स लाइ तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले जी रजिस्ट्रेशन मुकमिल थी वई आहे। मुराद अली शाह चयो त सिंध जे छहनि ज़िलनि में तालीमी इदारनि अंदरि फ्रेम्स जी बाक़ाइदा शुरूआति थी वेंदी। फ्रेम्स सां स्कूल में शफ़ाफ़ियत एतसाब ऐं निगरानीअ खे हथी मिलंदी। केपी जे इलाइक़े लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, केतिरा ई ख़ारजी जनम भेड़ा। सिक्योरिटी ज़रियन मौजूदु फोर्सिस गुझी इतलाह ते लकी मरवत में ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं दौरान दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो। ऑपरेशन दौरान केतिरा ई ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया ऐं सदन थाक तबाह कया विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में पुलिस जे शहीदनि जो ॾिहाड़ो अॼु मल्हायो पियो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पुलिस आफ़ीसरनि ऐं जवाननि जे शहीदनि जी मज़ार ते हाज़िरियूं गुलनि जूं चादरूं रखी सलामियूं ॾिनियूं। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां पुलिस जे शहीदनि खे भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त पुलिस मासूम जाननि जे तहफ़ुज़ लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं साराह जोॻियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पुलिस जा शहीद क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त वतन लाइ पुलिस जूं क़ुर्बानीूं विसारण जोॻियूं आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ वेढ़ में पुलिस पहिरीं सफ़ में रही आहे। सिंध समेत समूरे मुल्क में करबला जे शहीदनि जी यादि में आज़ादारी जारी। हज़रत इमाम हुसैन अलाम संदसि जान निसारनि जी यादि में निकितल चालीह जा मातमी जलूस मंज़िल तरफ़ रवां दवां। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़काणी डिवीज़न जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में निकितल जलूसनि जो सफ़र जारी। कराची में मर्कज़ी मातमी जलूस लाइ 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। सूबे जे ॿियनि शहरनि में बि सिक्योरिटीअ जा इंतिहाई सख़्त इंतज़ाम थियल। सिंध आबादगार बोर्ड जलालपुर केनाल ते लाॻीतो कम जारी रखण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। जलालपुर केनाल जे तामीरी फौरी तौर रोकी केनाल रिथा रद्द करण जो मुतालबो। सिंध आबादगार बोर्ड जो इजलास महमूद नवाज शाह जी सदारत हेठि हैदराबाद में थियो। सिंध आबादगार बोर्ड चयो त जलालपुर केनाल रिथा 116 किलोमीटर डिघी आहे, जंहिं मां 1,72,000 एकड़ ज़मीन आबाद थींदी। वाधू ज़मीन खे आबाद करण लाइ पाणी किथां ईंदो कुझु बि नाहे ॿुधायो वियो। सिंध जा बि ख़दशा ख़तम नाहिनि थिया। जलालपुर केनाल रिथा क़बूल नाहे। टंडो मोहम्मद खान जे इलाइक़े बुलड़ी शाह करीम भरसा ज़रई ज़मीन मां हिकु शख़्स जो तशद थियल लाश हथायो आहे। मक़तूल जी सुञाणप जनहान सूमरो वासी नूर मोहम्मद उर्फ़ मामा नूरो सूमरो जे नाले सां कई वई। लाश अस्पताल मुंतकिल कई वई आहे। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करे रहिया आहियूं। मेहड़ में 4 ॾींहं अॻु स्कूल वेंदे मुबैना तौर अगवा थियल टिनि शागिर्दियाणियुनि खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दियाणी रोशनी, फातिमा ऐं तंज़ीला खे पुलिस अदालत में पेश कयो। पुलिस पारां गिरफ़्तार मुख्य जवाबदार ज़ैन महर खे अदालत में पेश कयो वियो। शागिर्दाणिन अदालत में बयान ॾींदे चयो त कंहिं बि अगवा नाहे कयो, मर्ज़ीअ सां हैदराबाद ऐं बाद में मीरपुर वियूंसीं। अदालत टिनी छोकिरियुनि जा बयान बाद वारसनि हवाले करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: ॿुधाईंदो, ठीकु आहे? शरबत पुदीनो, ठीकु आहे, महिरबानी, को मसलो ई न आहे मुंहिंजा सजण साईं, महिरबानी, ठीकु आहे। त थैंक यू, वेलकम। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़ तव्हांजे समातुनि ते भॼे पियो। डॉक्टर साहिब, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त काफ़ी अहिड़ा जेके मरीज़ आहिनि, जीअं मिसाले अधो ठारी मीरवा वारो हुयो, या काफ़ी अहिड़ा दोस्त हूंदा आहिनि, मां मूंखे बेनता ख़ुशी थींदी आहे जो हिकिड़ो हुननि खे FM जे करे हिकिड़ो माना रिज़ल्ट मिले थो। तव्हांजी महिरबानी आहे, तव्हां असांजे FM ते अचो था टाइम कढी करे, ऐं वरी उन्हनि खे हिकिड़ो रिज़ल्ट मिले थो। अलाह ताला उन्हनि खे शिफ़ा ॾिए पियो, सिहतयाब थियनि पिया, ऐं यकीन जॾहिं अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी हूंदी आहे, तॾहिं सभु कुझु हूंदो अलाह ताला जी तरफ़ा। हिकिड़ो ज़रियो वञी डॉक्टर बणबो आहे, को बि डॉक्टर ॿुधायो, तव्हां चेल जे सूर जे लाइ भॼी भॼी बीठोसि, पर मूंखे मूं एतिरो टाइम दवा इस्तेमाल न कई।
1: बिल्कुलु
0: मुख़्तसिर टाइम पीरियड आहे न, 15
1: असांजे इन जेको आहे सो जेके बि असांजा पेशंट्स दोस्त हज़रात जिन खे अफ़ाको थिए थो असांजे प्रोग्राम जे तवसो सां, असांजे क्लिनिक जे तवसो सां, त सॼो क्रेडिट जीए मेहरापुर FM खे ई वञे थो, जेको उन जे आवाज़ ते जेके असांजा दोस्त ॿुधनि था, उहे मुखातिब थियनि था, उहे असांजे क्लिनिक ते अचनि था, ऐं उन्हनि खे उहे दवा वठी वञनि था, ऐं उन्हनि खे रिलीफ़ मिले थो, वरी ॿिए दोस्तनि खे ॿुधाइनि था। इहा हिकिड़ी चेन आहे, इहे इन जे ज़रिए अवेयरनेस थिए थी, ऐं उहे पेशंट अचनि था, ऐं असांखे इहा बेहद ख़ुशी थींदी आहे, ऐं पाण बि असां चवंदा आहियूं पेशंट्स खे त फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो। हिकिड़ा उहे दोस्त जिन खे फ़र्क़ु पवंदो आहे, उहे असां वटि रूबरू क्लिनिक ते ईंदा आहिनि, ऐं उते असांखे जेको आहे सो पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, ऐं उहे दोस्त जेके अवां ॾिठो ख़ुदि, जिन खे अञा अवां सुञाणो न असां सुञाणो, ऐं उहे हिते लाइव FM ते जेको आहे सो अची करे, ऐं इहे सिर्फ़ु अवेयरनेस हिकिड़ी बहितर आहे, इहे इन जेको फीडबैक ॾियनि था, इन सां हिकिड़ो इहो फ़र्क़ु पए थो त जेके ॾिसो जेके ॿिया अहिड़नि मर्ज़नि में मुबतला आहिनि, पुराणनि मर्ज़नि में, जिन खे अञा ताईं अवेयरनेस नाहे होम्योपैथिक जे बारे में, ऐं एतिरी ॼाण नाहे या एतिरो हू उन खां वाक़िफ़ु न आहिनि मेडिसिन्स खां, इलाज खां, त उन्हनि जे लाइ ई हिकिड़ो क़िस्म जो सबक़ु आहे, या उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो रस्तो आहे त अवां खे कहिड़े बि मर्ज़ में, चाहे 10 सालनि खां 20 सालनि खां मर्ज़ में मुबतला आहियो ऐं अव्हांखे कंहिंसां फ़र्क़ु नथो पए, त अव्हां होम्योपैथिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक अव्हांजे शहर मेहरापुर में मौजूदु आहे। अव्हां उते जेको आहे हफ़्ते जा 6 ॾींहं मौजूदु हूंदा आहियूं, सिर्फ़ु अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अव्हां इहो कॉन्टेक्ट नंबर असांजो जेको आहे 24 कलाक खुलियल हूंदो आहे, अव्हां राबितो करे ऐं जेको आहे सो बिल्कुलु पहुची सघो था, 0301-2196-851 ते। वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, चए मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो। 0301-2196-851 0301-2196-851 जिते कराची इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस्पताल नवाबशाह, MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे। का बि बीमारी लाइलाज न आहे, अवांखे गोॾनि जो सूरु आहे, कुंदरक जो सूरु आहे, चेल जो सूरु आहे, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी आहे, कनु वहे थो, कन जो सूरु आहे, दिलि जो मर्ज़ आहिनि, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, खंघि आहे, TB आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर आहे, जेकी अवां खाओ था उल्टी करे कढो था, तिरी अव्हांजी वधी वई आहे, जिगर हेपाटाइटिस B आहे, C आहे, गुर्दनि जो इन्फेक्शन आहे, गुर्दनि में अव्हांखे ज़ख़्म आहे, गुर्दनि में पथरियूं आहिनि, जेरे में ज़ख़्म आहे, चहिरे जो रंगु सांवरो आहे, चहिरे जी ख़ारिश आहे, फट आहिनि, फुरणियूं आहिनि, ॿारनि जो कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न वधी वियो आहे, जिन जो वज़न नथो वधे, यानी कि मोटापे जो शिकार आहिनि औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि, यानी सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाज कनि था। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, इस्लामाबाद पाकिस्तान जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर, हाणे अव्हांजे शहर मेहरापुर में मौजूदु आहे, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटरा पेट्रोल पंप, कोटली मोहम्मद कबीर रोड, मेहरापुर शहर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते। डॉक्टर साहिबु, हर जुमे, छंछरु ऐं आचर ते चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे, बिल्कुलु मुफ़्त आहे, जर्मन होम्योपैथिक वारनि जे थ्रू, जर्मन होम्योपैथिक जे करे डॉक्टर साहिब जी जेकी फ्रेंचाइज़ आहे जर्मन वारनि जी, डॉक्टर साहिबु जर्मनी मुल्क मां ॿुधो हूंदो, जर्मनी दुनिया जो वॾो मशहूरु मारूफ़ मुल्क आहे दुनिया लेवल ते, हिकु ख़ासि तौर ते जर्मन जेकी आहे होम्योपैथिक जेकी ट्रीटमेंट आहे उन में मशहूरु आहे, ऐं पूरी दुनिया में हिकु नालो आहे। जेके मेडिसिन आहिनि जर्मनी जूं, डॉक्टर साहिबु जर्मनी जूं मेडिसिन इस्तेमालु कनि था। ॾिसो, फॉरेन जूं दवाऊं जॾहिं ॿाहिरि मुल्कनि जूं दवाऊं इस्तेमालु थियनि थियूं, उन्हनि जो हिकिड़ो रिज़ल्ट पंहिंजो आहे, यानी जर्मन

0: 0306-16-23-793.
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: मुजफ्फराबाद के विनतकन एलए 27 एलए 28 ते पोलिंग जो अमल मुकम्मल थियण का पोए वोटन जी गणप जारी एलए 27 जे सबनी 196 एलए 28 जे 57 पोलिंग स्टेशन्स ते सुबह 8 का शाम 5 वगे ताई पोलिंग जारी रही एलए 27 एलए 28 ते मौसम जी खराबी सामान न पहुंचण सबब पोलिंग मुलतवी थी हुई। पीपल्स पार्टी एक भेरों बीहर नवाज लीग मथा धांधलियन जा इल्ज़ाम लगे छाया राणा सनाउल्ला पारा इल्ज़ाम रद्द धांधलियन बाबत पीपल्स पार्टी की पेश कल वीडियो के भी जाली करार दई छो। शेरी रहमान है पोलिंग अमलो बैलेट पेपर समेत नून लीग अगवाण के घर में पकड़ो वो चूंड अमले के निजी घर में मौजूदगी बैलेट पेपर से टप्पन वारा इतला इंतहाई घटती चुका है। धांधली के हवाले से वीडियोज ए सबूत इलेक्शन कमीशन अमलदार हवाले क्या वह वज़ीर आज़म के सियासी मामलों वाले सलाहकार राणा सनावला है पीपल्स पार्टी वट सबूत आन इलेक्शन कमीशन वट जमा कराए सुबह का शाम तई पोलिंग थी पर का भी शिकायत सामू न आई। पीपल्स पार्टी खटण से खुशी मल्हाई है हरण से धांधली जो घोड़ कन्दी है। फिलहाल भुट्टो बुधाए तो कंजा ढीह गणजन शुरू थवान सदर जहा ढी गणजन शुरू थी रहा है। नवा सूबा ठहण खराब गाल ना है पर मुल्क इन की सट सही सके तो नवा सूबा ठहण एतरो आसान कम ना है। मुल्की हालतन ता ध्यान हटाने लाए नवा शोशा छदया पा वन मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म के मशवरे का सिवाय अड़ी गाल न तो करे सके। मुल्क के आइन मौजिब भलाण की जरूरत है। जमियतुलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फैसलो किया है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के बलोचिस्तान जो वो वजीर बनजन बाबत जानन है। मुल्क में मर्जी जो हुकूमतों ठहण से जमहूरियत अगते न वधंदी मुल्क में कौमी और इंसाफ से बदल पॉलिसी की जरूरत है। नवा सूबा एजेंडा ते नाहिन नई आइन में का खोट है। खोट निज़ाम में न पर असा में है। अस आइन ते अमल नाहे क्यों आइन नए निज़ाम ते सच्चाई सा अमल कंदासी ता निज़ाम भी डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनावला चाहिए ता अस आइन की भजकड़ी कयूं आइन निज़ाम के जकड़ियल रखूं ता ही कम किए कंदो ही सिस्टम अध सदी कामयाब रहो है अगते भी कामयाब रहंदो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
4: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहराब तो आवाज भी मेहरापुर की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: एलोवेरा फ्रेंड
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

नवा सूबा ठहण ख़राब ॻाल्हि आहे, पर छा मुल्क इन जी सट सहे सघे थो? नवा सूबा ठहण एतिरो आसान कम न आहे। मुल्की हालतुनि तां ध्यानु हटाइण लाइ नवा शोशा छॾिया पिया वञनि। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म जे मशवरे खां सवाइ अहिड़ी ॻाल्हि नथो करे सघे। मुल्क खे आइन मोच भलाइण जी ज़रूरत आहे। जमियत उलमा इस्लाम जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जी क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फज़लुर रहमान चयो त बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जे बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर बणजण बाबति ॼाण न आहे। मुल्क में मर्ज़ीअ जूं हुकूमतूं ठाहिण सां जमहूरियत अॻिते न वधंदी। मुल्क में क़ौमी ऐं इंसाफ़ ते ॿधल पॉलिसी जी ज़रूरत आहे। नवां सूबा एजेंडा ते न आहिनि। नई आइन में का खोट आहे? खोट निज़ाम में न, असां में आहे। असां आइन ते अमल न आहे कयो। आइन ते सचाई सां अमल कंदासीं त निज़ाम बि डिलीवर कंदो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त निज़ाम खे जकड़ियल रखूं त ही कम कीअं कंदो। अधु सदी खां कामयाब निज़ाम अॻिते बि कम कंदो रहंदो। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह आसिफ अली जे चयो आहे त नवनि सूबनि जी ॻाल्हि मुल्क ख़िलाफ़ साज़िश आहे। आलमी साम्राज्य ताक़तूं पाकिस्तान खे कमज़ोर करणु चाहिनि थियूं। सिंध जा माण्हू सिंध विरहण या नवनि सूबनि वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। 8 करोड़ सिंधियुनि जा 16 करोड़ हथ पंहिंजी धरतीअ जी हिफ़ाज़त लाइ मुतहिद आहिनि। सिंधी क़ौम पंहिंजी धरती सुञाणप ऐं वहदत जे तहफ़ुज़ लाइ हर क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयारु आहे। इक़्तदार जा ख़्वाहिशमंद कुझु सियासी अंसर अवाम में नफ़रत पखेड़े रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ मोहसिन नक़वी खां इस्तीफ़ा वठे। वज़ीर आज़म चए थो सिस्टम ठीकु आहे ऐं मोहसिन नक़वी चए थो त सिस्टम दुरुस्त कम न पियो करे। मुल्क में नवनि सूबनि जी का गुंजाइश न आहे। सिंध जो अवाम कंहिं बि सूरत में नओं सूबो क़बूल न कंदो। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जे यू आई अॻवान राशिद महमूद सुमरो चयो त सिंध में सरदार जो पुटु अहुआबाद 2 कलाकनि में बाज़ियाब थी वञे थो, पर फज़ीला सरकी खे 15 साल ऐं प्रिया कुमारी खे अगवा थिए 5 साल गुज़री विया आहिनि, उहे अञा बाज़ियाब न आहिनि थियूं।

आलमी मार्केट में तेल घटण खां पोइ पाकिस्तान में पेट्रोलियम शयूं सस्तियूं थियण जी उमीद। उगरा ज़रियनि जो चवण आहे त पेट्रोल 6.93 रुपया ऐं डीज़ल 4.07 रुपया फी लीटर सस्तो थियण जो इम्कान आहे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में घटिताई रुगो 1 ॾींहुं 5 अगस्त लाइ कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी।

0: become better. Fuel adjustment, RPMG adjustment, computerized Japanese machine zariye kai baniye thi. Honda J qualified technician ji zere nigrani. Irshad Autos, Halani Road, Mehrapur. Rabte jilai 0320180003.
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर, हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372, 0242-460100।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-8051।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहुं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेट

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुभाणे खुली वेंदो ईरान वटि सुठो फ़ाइदो करण लाइ ही आख़िरी मौक़ो आहे। तेहरान माहिदे ते सही न कई त तबाह थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि जे पहिरें मरहले में आबना हरमुस खे खोलियो वेंदो। ॿियो मरहलो ईरान जे एटमी हथियारनि बाबति हूंदो। तेहरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। ईरान सां गॾु सऊदी अरब, यूएई ऐं कतर बि ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त कई हुई। ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त बि ईरान तरदीद कंदो आहे, नतीजनि जो इंतज़ारु करणु घुर्जे।